0: औरत के खूबसूरती के लिए हाइट चाहिए 5'4".
1: और फिगर
0: 36, 24, 36, नथिंग लेस नथिंग मोर।
2: लेकिन ये कैसे होगा?

0: गांव का चेला, किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
1: महाराज
0: यस
1: योगी
0: दैट्स राइट
1: वेलकम
0: थैंक यू।